0: एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, चलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए, कैसे लगा आपको?
1: Of course, starring Sharmin Segal there and Taha Shah. What a great one from the series, Heeramandi 1. Well, there are rumors that Heeramandi 2 is coming.